कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा कुमाया श्लोक महला तीजा माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिनी सच नाम चित लाया बिन नावै जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया धंधा करत्या नेह फल जन्म गवाया सुख दाता मन ना वसाया नानक नाम तिना कौ मिलिया जिन कौ तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साध ना पाया जो कसतूरी मृग ना जाने भ्रमदा भरम भुलाया अमृत तज बिख संग्रह करतै आप खुवाया गुरमुख विरले सोझी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया रसना हर साध आया सबदे ही नाव उपजै सबदे मेल मिलाया बिन सबद सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पाउड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइये तिस रूप न रेख आदृष्ट कहो जन क्यो त्याइये निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइये गुर पूरे वे खालिया गुर सेवा पाइये श्लोक महला तीजा जौ तन कोलू पीड़िये रतन पूरी देह जियो मंजै चौखनिये जियो मंजै चौखनिये सच्चे संदड़ै नेह नानक मेल न चुकई राती अतै देह महला तीजा सज्जन मैडा रंगुला रंग लाए मन ले जौ माँ जीठै कपड़े रंगे पी पाहे नानक रंग ना उतरै ब्या ना लगै के पौड़ी हर आप वरतै आप हर आप बुलाएदा हर आपे सृष्ट सवार सिर धंदै लाएदा एक ना भगती लाए एक आप खुआएदा एक ना मार्ग पाए एक उजड़ पाएदा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाएदा श्लोक महला तीजा सत गुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौमै विचहु जाए बंधन तोड़ै मुकत होए सच्चे रहे समाए इस जग मह नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए नानक जो गुर सेवह अपना हाओ तिन बलिहारै जाओ महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजै लगै जाए तिस नो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए घर घर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एहो मन वस न आवई थके कर्म कमाए भेख धारी भेख कर थके अठ सठ तीर्थ नहाए मन की सार ना जाननी हौमै भरम भुलाए गुर प्रसादी भाओ पया वडभाग वस्या मन आए पै पै ऐ मन वस हुआ हौमै शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले ऐ नाओ पाया नानक सुख समाए पौड़ी एह भूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एहो माया रंग कसुंभ

फिर पशुतावना सरोक महला तीजा सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाय फिर मिलन ना पाए नी जमह तै मर जाहे सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मह दुख पाहे नानक नदरी बख्श लेह सबदे मेल मिलाहे महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर ना ठाओ जो छुट्टड़ घर कर फिरे दोह चारण बद नाओ नानक गोरमुख बख्शिया है से सतगुर मेल मिलाओ पावड़ी जो सेव है सत मुरार से भव जल तर गया जो बोल है हर हर नाओ तिन जम छड़ गया से दर्ग है पैदे जाहे जिना हर जप लया हर सेव है सेई पुरख जिना हर तुद मया।

लग गई ना फिर जोनी पाहो महला तीजा चोहो जुगी कल काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जुग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाइए जिन कौ हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उचर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत।

सतगुर का शब्द सुन ना जाग्यो, अंतर ना उपजियो चाओ, शरीर जलो गुण बाहरा, जो गुर कार न कमाए, जगत जलंदा डिठ मैं, होमै दूजै पाए, नानक गुर सरणाई उबरे, सच मन शब्द ते

संसार मन रे संसार अंध गहेरा चाहो दिस पसर्यो है जम जेवरा रहाओ कबित पढ़े पढ़ कबिता मुए।

0: बने तुम संगे आप न देहो ता लेवाओ मंगे रहाओ द्वे सेर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना अध सेर मांगो दाले मोकाओ दोनों वखत जिवाले मोकाओ दोनों वखत जिवाले खाट मांगो चाओ पाई सिरहाना अवर तुलाई ऊपर काओ मांगो खींदा तेरी भगत करै जन थींदा मैं नाही किता लब्बो एक नाओ तेरा मैं फब्बो कह कबीर मन मानिया ताओ हर जानिया राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद
1: इत्थे हुण पाठ भगत नाम दे लिखिया होया है पहला नाम देव भी तुसी दर्शन कर चुके हो नाम दियो दे भी दर्शन होए ने हुण नाम दे आया इत्थे आए नहीं समझना भी बाबा जां ऊड़े उंकड़ लिखना भुल गए नाम दे इसे तरह ही इहदा उच्चारण करना जिवें लिखिया है पर नाम यह भी भगत नामदेव जी का ही वाचक है
2: जिवें आम कई बारी आपां पूरा नाम नहीं भी लेंदे होंदे ते थोड़ा जिहा शॉर्ट जिहा नाम लै लैंदे इहनूं इसे तरह ही समझना बई जिवें भी गुरु महाराज ने नामदेव जिवें काहली च आपां बोलदे हां ते उह नामदेव जी का वाचकी समझना लिखिया नामदेव है ते पढ़ना भी नामदेव है।
1: एक चीज होर भी है जदों तुसी गुजरात महाराष्ट्र दे इलाके विच जाओगे उस इलाके विच बोलदे भी नाम इसे तरह ही ने जिहदा नाम रामदेव है उहनूं रामदेव कहिंदे आ कल्ला जिहदा नाम नामदेव है उत्थे वाहवा बहुत घट बोलदे उहनूं नामदेव कहिंदे आ। सो उत्थे मैं आप अपने कन्नी सुणिया नाम भावें रामदेव सी उस सज्जन दा पर उहनूं कहिंदे सारे रामदेव ही सी। सो इस करके भगत जी भगत नामदेव जी का इलाका भी उही है हिंगोली दे विच उन्हां दा प्रकाश होया है महाराष्ट्र दे इलाके विच। सो इस करके इत्थे इह इलाके नाल भी संबंधित इस तरह दे नाम हो सकदा जिस तरह बाई जी ने दस्सिया है भी कई वारी असीं शॉर्ट विच इदां नाम लैंदे आ उस इलाके विच असीं वेख्या है भी उत्थे वाहवा थोड़ा घट बोलदे आ रामदेव नां सी उह सज्जण दा मैनूं याद आ गया एकदम तां उहनूं रामदेव ही सारे कहिंदे सी इसे तरह ही नामदेव ते नामदेव
3: जिमें कबीर जी का नाम है तो कबीर है पर बहुत थावां ते कबीरा लिखिया भी आउंदा है गुरबाणी दे अंदर। सो इस तरह किते भी आपां इह गल दा भरम नहीं करना जो लिखिया उह पढ़ना है जी।
0: राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जब देखा तब गावा तौ जन धीरज पावा नाद समायलो रे सतगुर भेटले देवा रहाओ जह झिलमिलकार दसंता तह अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार चमकार बीजुल तही नेरै नाही दूर निज आत्मै रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह दीपक जलै छंछारा गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहज समानिया।
1: इत्थे एक मिनट लई वेख लो विश्राम दी गल अज तुसी पुछी भी सी ते ओ बारी बारी तुहानूं हुण चंगी तरह क्लीयर हो जाएगी। हुण वेखो इत्थे पंक्ति है नेरै नाही दूर जे इत्थे विश्राम ला दोगे इहदा हुण अर्थ बन गया नेड़े है दूर नहीं जे इहदे हुण विश्राम लग जाणगे नेरै नाही दूर फिर इहदा अर्थ बन जाणा वी नेड़े नहीं दूर है। बस विश्राम की इन्नी कीमत है एक थां तो दूजे थां ते लगन नाल अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इत्थे हुण तुसी स्पष्ट तुहानूं पता लग जाएगा नेरै इत्थे विश्राम है ना ही दूर नेड़े है दूर नहीं है। जे विश्राम लग गया नेरै ना ही दूर ना ही ते विश्राम लग गया फिर वह अर्थ बिल्कुल ही ओपोजिट बन जाना भी नेड़े नहीं है दूर है। सो इस करके विश्राम का खास ध्यान सानू रखना पैंदा। हाँ जी
0: गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहज समानिया घर चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन।

0: दर्पत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पावै, सो गत भया अछत राज बिछरत, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत भई हमारी।
1: छछे नु अंकड़ आया, मैं पहला भी जिंदुड़िए शब्द विच भी बेनती करी सी, इथे भी जिस तरह पाठ किया गया बिछुरत अंकड़ बोल के पाठ करना जी।
0: राज भयंग प्रसंग जैसे है, आब कछ मरम जनाया, राज भयंग प्रसंग जैसे है, आब कछ मरम जनाया, अनक अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया, सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भुगवै सोई, सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भोगवै सोई, कह रविदास हाथ पै नीरै, सहजे होए सो होई, जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बदन तुम बाधे, अपने छूटन को जतन करो।

0: सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमारथ परवेश नहीं कहियत आन
1: अचरियत।

0: चोख चुख होए साहिब तेरे नाम विट हो बिंद बिंद चुख चुख होए
1: सेवी साहिब अपना अवरना जन चौ को चिद पर टिप्पी बोल के हां जी
0: रहाओ सेवी साहिब अपना अवर ना जाचों कोए नानक ताका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए।

नानक सायर एव कहत है सच्चे परवदगारा जे तू किसे ना देही मेरे साहिबा क्या को कटै गहना नानक बिनवै सो किछ पाईए पुरब लिखे का लहना नानक नाम खसम।

0: किछ सुनिए किछ कहिए, भाल रहे हम रहन ना पाया, जीव त्या मर रही है।
1: तनासरी तनासरी महला पहला घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपै हयाओ जियड़ा बिल लाए, सिर जिस वारे साचा सोए, तिस विसरिया चंगा क्यों होए, हिकमत

0: सात का ढब था नष्ट जग भ्रष्ट होए डूबता एव जग
1: ए भी पाठ शुद्ध होया था नष्ट नन्ने पर अधक ला के पारा पाठ
0: कल मह राम नाम सार अखी ता मिट है नाक पकड़ है ठगन काओ संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाछै काशना सूझै एहो पद्म अलो खत्रिया ता धर्म छोड़िया मलेश भाख्या गही सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज पुराण शुद्ध है करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुकत नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गगन मै थाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाव सहस तव नैन नन नैन है सहस तव नैन नन नैन है तो हे काओ सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसकै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिन मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारिंग काओ होए जाते तेरा नाम वासा तनासरी महला तीजा घर दूजा चाओ पदे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद एहो तन अखुट ना ठकुट ना जाए एहो तन अखुट ना निखुट ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर काओ सद बल जाई गुर कृपा ते हर मन वसाई से धनवंत हर नाम लिव लाए गुर पूरै हर धन प्रगासिया हर कृपा ते वसै मन आए रहाओ आप गुण काट गुण हृदय समाए आप गुण काट गुण हृदय समाए पूरै गुर कै सहज सुभाए पूरे गुर की साची बाणी सुख मन अंतर सहज समाणी एक अचरज जन देखा हो पाई दुबदा मार हर मन वसाई नाम अमोलक ना पाया जाए गुर प्रसाद वसै मन आए सब मह वसै प्रभ एको सोए गुरमति घट प्रगट होए सहज जिन प्रभ जान पछाणिया नानक नाम मिलै मन मानिया तनासरी महला तीजा हर धन हर नाम धन निर्मल अत अपारा हर नाम धन निर्मल अत अपारा गुर कै शब्द भरे भंडारा नाम धन बिन होर सब बिख जान माया मोह जलै अभिमान गुरमुख हर

0: सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर भानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जा कै वास है काम तिना
1: सो
0: इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जा कै वास है काम तिना सो ऐसा हर त्याय मेरे जीअड़े
2: काम तिना दी थां ते काम तिना पाठ ठीक रहेगा
1: काम तिना
2: फिर पढ़ दे
0: इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जा कै वास है काम तिना
1: तिना तिना
3: बोला नहीं पाठ है जोर दा
1: काम तेन गोगदा नाम
0: इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जा कै वास है काम तिना काम तिना
1: तिना ठीक
0: इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जा कै वास है काम तिना सो ऐसा हर त्याय मेरे जीअड़े ता सर्ब सुख पाव है मेरे मना जप मन सत नाम सदा सत नाम हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना तनासरी महला चौथा मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए।

ठाकुर तिन गुर है कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुर अपने ऊपर बार जाओ गुर अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार मह।

शुद्ध उच्चारण संबंधी पठन पाठ विचारां होईयां, बाणी पढ़दियां, कीर्तन करदियां, विचारां करदियां, आनंद साहिब जी दा जाप करदियां होईयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां लई मुआफी बख्शणी, अगे तो समत बख्शिश करनी, ग्रीवनवाज आप जी दे दर घर दे प्रीतवान बीबी दीपिंदर जोत कौर वालों अपने भ्राता भाई मेजर सिंह दे जन्मदिन की खुशी विच शुकरानी की अरदास है। भाई मेजर सिंह होरां नूं देह रोगता तंदुरुस्ती दीर्घायु गुरसिखी जीवन चढ़ती कला बख्शिश करनी, आप जी के हजूर पंचामृत कड़ा प्रसाद हाजिर है, दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद साध संगत विच वरताउण।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै

0: بله سانه ها
1: पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

भिक्खु ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचे सोह दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहै करै विचार करते कै करनै नाहि सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै हुवै सचियार। तबलै उपर किता भार धरती होर परै होर होर तिस्ते भार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जानै कोए। लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाले हो रूप केती दात जानै कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ माल भख खाहे। असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव

अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीते कपड़ होए दे साबून लईऐ ओह धोए भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाह आपे बीजा पे ही खाहु नानक हुक्मी आवह जाह तीरथ तप दया दात दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीकाउ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपाउ जाने अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात सहस अठार है कहन कतेबा असलू एक धात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनास नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाही एते सुरत ना पाइया नदिया अतै वाह पव है समुंद ना जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनहु ना विसर है अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करना देन ना अंत अंत ना वेखन सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत्र

इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूत अंग अब अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण परनाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भर नाढ़ अन दंड बाढ़ चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पूजंग पर्यात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर मानिया चत्तर चक्कर दानिया चाचरी छंद न सत्तरै न मित्रै न परमंग न पितरै न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्रै न मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अदिसै अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत वरणै के विभूत करणै के राजं प्रभाहै के धर्मं तुजा है के आशोक वरणै के सर्वा अपरणै के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफवुल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र दान्या के सर्वत्र गौना के सर्वत्र पौना के सर्वत्र देसै के सर्वत्र भेसै के सर्वत्र राजै के सर्वत्र साजै के सर्वत्र दीनै के सर्वत्र लीनै के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसै के सर्वत्र भेसै के सर्वत्र कालै के सर्वत्र पालै के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजै के सर्वत्र राजै के सर्वत्र सोखै के सर्वत्र पोखै के सर्वत्र तराणै के सर्वत्र प्राणै के सर्वत्र देसै के सर्वत्र भेसै के सर्वत्र मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र भानै के सर्वत्र मानै के सर्वत्र इंद्रै के सर्वत्र चंद्रै के सर्वं कलीमै के परमं फिहिमै के आकल अलामै के साहिब कलामै के हुस्नुल वजू है तमामुल रुजू है हमेसुल सलामै सलीखत मुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रुजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अपीद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुकत विभूत हैं प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूपै अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागै
त्रिपुगत स्वरूप हैं, अछिज हैं, अछूत हैं कि नरकं परनास हैं, पृथ्वीओल प्रवास हैं, निरुकत प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, विपुगत स्वरूप हैं, परजुगत अनूप हैं, निरुकत सदा हैं, विपुगत प्रभा हैं, अनुकत स्वरूप हैं, परजुगत अनूप हैं, चाचरी छंद अभंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अभूत हैं, अदूत हैं, अनास हैं, उदास हैं, अतंद हैं, अबंध हैं, अभगत हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, अदेख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगंभ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज कर हिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकान हैं हिरासुल फिकान हैं कलंकं परनास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रिजाय कर हीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं परनास हैं बेहेस्तुल निवास हैं के सर्बुल गवान हैं हमेशुल रवान हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परं परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुर्रत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो बेपूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनांग हैं के अमितो अपंग हैं मद पार छंद त्वय प्रसाद मुन मन पर नाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर पर पांज अन गण पर नाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण पर नाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकैस दाहु ओ अंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है धृत के धरण है
जग के करण है मन मानिया है जग जानिया है सर्वं भर है सर्वंकर है सर्व पास्या है सर्वनाश्या है करुणाकर है विश्वं भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कालखंडस है पार ते पार है करुणाकर है अजपा जाप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विश्वं भर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है भव भंजन है अरगंजन है रिप तापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कार है हर्ता हार है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बास है जास के जास है पुजंग पर्यात छंद नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो ब्रिंद ब्रिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कल है कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे पुकर्मं परनासी सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमुल रिहिमे चत्तर चक्रवर्ती चत्तर चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवे त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहयो मत को उना देखियत प्राण पति के श्री भगवान के पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतांग जरे जर संग अनूप उतांग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत शीस ना जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत काओ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदांगन गारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गणे नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन
ਤੰਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਿਸੇਖੈ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਜਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ ਪਾਉਣ ਆਹਾਰ ਜਤਿ ਜਤ ਧਾਰ ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਕ ਦੇਖੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੈ ਸੁਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੋ ਸਾਜ ਸਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੂਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬੇਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲੈਂਗੇ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ ਅਬਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤਿਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੇ ਗੜਾਣ ਕੇ ਤੋੜ ਨਹਾਰ ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰੇ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦੇਵਈਆ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸੱਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਦਪ ਜਾਉਣ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੈਂਗੇ ਕੋਟ ਇਸਨਾਨ ਗਜਾਦਿਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੈਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸਰ ਬਿਸਨ ਸਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੈਂਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰੈਂਗੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋਉ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹਾਉ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸਾ ਮਹਿ ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਾਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਊਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਾਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਪਾਤ ਸਾਹਿ ਦਸਵੇ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵਹੋ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੈ ਕਰੀਐ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਹੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਹੈ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸੱਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ ਹੈ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਜੈ ਉਬਰੀਐ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜ ਜੂ ਕਰੀਅਹੋ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਾਸ ਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸਾ
सकल काल का किया तमासा जमन काल जोगी सेवकियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है घट घट के पट पट की जाना है जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंभ आदि अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जा को भेव न पावत बेदा ताका ओ कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप आपुनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दिनी कहू फूल राजा हुवै बैठा कहूं सिमट भयो संकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अबरछा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रान काता जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रच्छा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्ब ठाउर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छाय करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गोंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाओ निकट ना तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबत सतरह सहस पनिजै अर्ध सहस पुन तीन कहिजै
ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵੇ ਵਾਰਾ ਤੀਰ ਸਤੁਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਸੁਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕਉ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਨਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡ ਕੈ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡ ਕੈ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਾ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸ਼ਬਦ ਧਰਹੁ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜ ਹੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਏਸ ਨਾਉ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜ ਹੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਜਾਣ ਪਾਵੈ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣ ਦੇਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦਹਿ ਦਿਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਾਣ ਪਾਵੈ ਆਵ

सत्संग जी अंतर्गत होके नाम नूं सुनना करना जीओ नाभ चक्कर ते सुन सकते हो हिरदा चक्कर जिथे दिल की धड़कन है उथे सुन सकते हो कंठ चक्कर जिथे गले च आवाज आती है उथे सुन सकते हो किसी भी प्राणी ने कृपा करके मस्तक ते जोर दे के ध्यान नहीं लेके जाना जीओ जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जीओ जिन्हां गुरमुखां नूं नाम नहीं सुनदा ओ सास ग्रास अंतर्गत सिमरन

जिस बोलत मुख पवित होई, जिस सिमरत निर्मल है सोई, जिस अरादे जम किछ ना कहे,

मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैर हुए प्रवान ले स्थान ले पूजे प्राण

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए, दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसहु गुर सहु तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे।

नर असुर नेत नेत बनत्रण कहत सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत समत कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी कहाँ लगे एहो कीट बखने महिमा तुमरी तोहे प्रभ जन मूख उचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लख

श्री वाहे गुरु जी, जैसे अह अग्न कौ बालक बलोक धावै, गह गह राखै माता सुत बिललात है, वृथा

परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी गुरकरण सिंह अते बीबी इंद्रप्रीत कौर तिना दे आनंद कार्ज समागमां विच शामिल होने वास्ते पहुंचे हो। महाराज जी दे चरणा विच अरदास अते हुक्मनामिया दे नाल आनंद कार्ज समागमां दी प्रारंभता हुई है। हुण मैं बेनती करां भैन इंद्रप्रीत कौर हुणां दे पिता जी सरदार गुरनैब सिंह जी हुणां नूं ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नव निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी पांच प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां जिन्ना आप जी दा नाम जपिया वंड के शकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए गए बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता जंडा नाल बन के साड़े गए देगां विच उबाले गए पुठियां खल्लां लुहाइयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग निभाही तना समूह शहीदां दी पावन पवित्र कमाई दा त्यांतर के बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवण का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी बख्शो जी सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे पवित्र यात्रा अते दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा ही अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है जी तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल जी का दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो ही निमाण्यो के माण नितान्यो के तान न्योट्यो की ओट सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज आप जिया का पावन गुरवाक है हर नामो मंत्र दृढ़ाई दा कटे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग आप जिया ने अपार कृपा बख्शिश मेहरामत कीती है सच्चे पातशाह जीओ आप जिया दे दर कर दे प्रीतवान भाई बलजीत सिंह जी अते बीबी निर्मलजीत कौर तिना दे सपुत्र गुरकरण सिंह जी पड्डा अते भाई गुरनैब सिंह बीबी गुरमीत कौर तिना दी सपुत्री बीबी इंद्रप्रीत कौर गरेवाल दा आनंद कारज समागम आप जिया दी पावन पवित्र हजूरी विच हो रहा है सच्चे पातशाह जीओ चार लावां दे पाठ होए हन गुरबाणी कीर्तन अते लावां दे कीर्तन होए हन छे पौड़ियां आनंद साहिब जी की अरदास है जी समुचियां ही सेवावां निभाउंदिआं गुरबाणी पढ़दिआं सुणदिआं समुची मर्यादा निभाउंदिआं हुईआं सरबत भुल्लां दी कृपा करके खिमा बख्शणी अगाह वास्ते समत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फल आदेश सुभाग जोड़ी अते दोनां ही सेवक परिवारां नूं बख्शिश करना आपसी प्रेम प्यार इतफाक विश्वास भरोसे दी दात बख्शिश करनी बच्चियां नूं माता पिता दे आग्याकारी बना के रखना दुनियावी विद्या दे सहत ब्रह्म विद्या दी दात बख्शिश करनी
ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਮਾੜੀ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਲ ਛਿੱਦਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤੱਤੇ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਿਸ਼ਚਾ ਭੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਨੇ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਈਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਔਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਸਭੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਨੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲੈਣੇ, ਬਿਰਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਪੈਜ ਪਤ ਇੱਜਤ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਦਰ ਘਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਸਵਾਬ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ ਕਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੋ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਸੇਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮੇਲੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ।

0: कर दियो दास दी जो गलती होई, माफ कर दियो दास दी जो गलती होई।
1: उतरे बदू शेर शाना दिसे सारा, पुल बख्श दे दातिया तू बख्शन हारा, पुल बख्श दे दातिया तू बख्शन।

के अठारे दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली साधु एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

आप जी के हजूर विछड़ी हुई जीवात्मा दे निमित सेवावां करदे आं। परिवार वालों आप जी नूं सुंदर वस्त्र भेंट किए गए हैं, आप जी नूं सोभनीक हो रहे हैं। गरीबनवाज पंचामृत कड़ा प्रसाद हाजिर है, दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। गरीबनवाज कृपा करनी, पिछे समूह परिवार नूं आपसी प्यार इतफाक सुख शांति तंदुरुस्तियां बख्शिश करनिया। दर आई संगत दियां तिलफुल भेटावां।

सहजे जागे सहजे सोवे, गुरमुख आन दिन उसतत होवे। मनमुख भरमै सहसा सो होवै।

मतिया वह जो हर रतिया, हर एक तिया वह एक, इको हर सत्या, हर इको वरत एक, इको उत्पत्या, जो हर नाम तिया वह तिन डर सट कत्या, गुरमति

त्रिपतास है मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर।

ताका रिजक आगै कर धरिया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भौ करिया। उड़े उड़ आवे सै कोसा, तिस पाछै बचरे छरिया। तिन कवन खड़ावै कवन चुगावै, मन में सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल।

तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबान। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी, से मुक्त पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

भगत सलाहन तुध जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खाट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख परंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सोई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान हुई, आसा महला चौथा।

तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहें

अले मन एक न चेत संबूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी सरणा जिन तू नाही विसरया आसा महला पंजवां।

काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ। जप तप सं

धर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ।

है जेती बरनत पेन पेन तुहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी ओत भुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रच्छा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध

तेरा सब किछ है, जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब